जपजी सर एकोंकार सतनाम करतापुर निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवंग गुरुप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच सोचे सोच न हो वे जे सोची लखवार चुपे चुप न हो वे जे लाए रहा लिफ्तार भुखिया भुख न उतरी जे वन पुरिया पार से सियाना पलक होए था एक न छाले नाल खिव सचियारा होइए खिव कूरे तुते पाल हुक्म रजाई छरना नानक लिखिया नाल हुक्म ही होवा न कर हुक्म न कह जाई हुक्म ही हो वन जी हुक्म ले वरियाई हुक्म ही उत्तम नीच हुक्म ही दुख सुख पाए एक न हुक्म ही बख्शीश हुक्म ही सदा बवाये हुक्म ही अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्म ही जे बुझे ता होवे कह न कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को ता चने निशान गावे को गुण वरिया यचार गावे को विख्या विगम बिचार गावे को सच तरे तंके गावे को जीले फिर दे गावे को जापे दी से दूर गावे को वेहे हरा दूर कथिन आवे तोत कत कत कति कोति कोत कोत तेदा दे ले ते तत पाए जुगा जुगंतर काई काई हुकम ही हुकम चलाए राव नानक वैसे वे परवाओ सच्चा साहेब सच्चा नाय वाखिया वाओ अपार आखे मंगे दे दे दात करे दातार फिर के आगे रखिए जिस दिसे दरबार मोखे बोलन बोलिए जिस सुंदरे प्यार अमृत वेला सच नाओ बरियाई विचार कर्मी आवे कपरा नदरी मुख द्वार नानक है वे जानिए सत आपे सच यार तपे न जाए कि तन होए आपे आप निरंजन सोए जिनसे भी आतिम पाया मान नानक गावे गुण निदान गाविए सुनिए मरवा क्या बाओ दुख पर हर सुखा ले जाए गुरुमुख नादंग गुरुमुख वेदंग गुरुमुख वे रसमाय गुरीश्वर गुरु गौर बर्मा गुर कृपा की माय जय हो जाना आका नाहीं कहे न कत न जाए गुरे के दे बुझाए सबना जिया का एक दाता सोमे विसर न जाए तीर्थ नावा जे तिस पावा विम्बाने के नाए करी जे तिस सिर तु पाई वे का विंके में मिल ले माधवीच करण जमर महान जय गुर की एक सुनी गुरे के दे बुझाए सबना जिया का एक दाता सोमे विसर न जाए जय चुप छे आर जा होर न सुनी होए नाव खंद विच जानिए नाव सले सब कोय चंगा नाव रखाए के जस

तेरे जगले, जेत स्मरण आवे ता पर न पूछे के कीता अंदर कीता का दोषी दोस्त्रे। नानक ने गुं गुं करे गुण बंतिया गुंदे, तेहा कोय न सुजे जेतिस गुण कोय करे। सुनिए सिर पर सुनत सुनिए तरा था लखस, सुनिए तीपलो पताल सुनिए तो न सके काल। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दू पाप का नास। सुनिए ईश्वर बर्म इंद सुनिए मो सलाम मंद, सुनिए जो जुगा तन वेद सुनिए शत सिमृत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दू पाप का नास। सुनिए सत संतो ज्ञान सुनिए असत का इश्नान। सुनिए पर पावे मान सुनिए लगे सहेश ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दू पाप का नास। सुनिए सरागना के गा सुनिए शीर पीर पतिशाओ। सुनिए अंदर पावे राव सुनिए हाथों वे आसकाओ। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दू पाप का नास। माने की कत कहे न जाए, जे को कहे कचे पछताए। राकर कम नल कनहार माने कव करम विचार। ऐसा नाम निरंजन होय जे को मन जाने मंकोय। माने सुर तुवे मंबूत माने सगवन राखी सुत। माने मोचंता न काय माने जम के सत न जाए। ऐसा नाम निरंजन होय जे को मन जाने मंकोय। माने माग तक न पाए माने पत्सियों पर गज जाए। माने मगन चले पंथ माने धर्म सती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होय जे को मन जाने मंकोय। माने पावे मोक द्वार माने परवारे सादार। माने तरे तरे गुरु सिख माने नानक हवे नविक। ऐसा नाम निरंजन होय जे को मन जाने मंकोय। पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावे तिरके मन। पंचे सोए तारा जान पंचे का गुरे ध्यान। जे को कहे कहे विचार करत के करने नाए समर। दोल धर्म किया कपूत संतोख धर्म किया की सुत। जे को बुझे होवे सचियार तल दे ऊपर के तवर। धरती होर तरे होर तिस्ते वर करे कमजोर। जी जा रमगा के नाव सबन लिखिया बुरी कलम। ए ओ लिख लिख जाने कोय लेखा लिखिया केता होय। केते तन सियारियो रूप केते तज जाने कुंकुत। कीता पसाओ को कुआओ तिस्ते होए लग तरियाओ। गुरित कवन कहा विचार बर न जावा एक बार। जो तुवे पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार। असंक जाप असंक भाव असंक पूछया संक तपताओ। असंक कुरिया मुवेद पत असंक जोग मुराय उदास। असंग भग गुंगियान विचार असंग सत्य असंग दत्तार। असंग सुर मुख वक्सार असंग मूल लिवलाय तार। गुरित कवन कहा विचार बरिन जावा एक वर। जो तुय पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार। असंख मूर राम मकोर असंख जोर हरम मकोर। असंख मर कर जाए जोर असंख अल्ब हत्या कमाए। असंख पापी पप कर जाए असंख कुरियार कुरे फिराए। असंख मलेच मल बकाए असंख निंदा सिकारे वर। नानक नीच कहे विचार बरिन जावा एक वर। जो तुय पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार। असंख नाव असंख ताव अगम अगम असंकलो। असंख करे सिर बर होय अग्रि नाम अग्रि सला। अग्रि ज्ञांगी कुंगा अग्रि लकम्बुलंबन अग्रि संसंजो बेकर। जिने लेके ते सिरनाए जे फुरमाए ते ते पाए। जेता कीता ते तनाओ विना विनाए कोताओ। कुरित कवन कहा विचार बरिन जावा एक बार। जो तुय पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार। बारिये हाथ तरे तंदे पानी तू ते हुते स्केत। मूत पलीती का परा होए देसा बुलनाए ओ दोए। बारिये माँ पप्पा के संग ओ तो पे नावे के रंग।
पुनी पपिया करनाए कर कर करना लगने जाओ, आपे पीछा पे विकाओ नानक हुकमिया वो जाओ। तीरता तिया दतन जे को पावे तिर के मन, सुनिए मनिये मखी तबाओ अंतर्गत तिर मनाओ। सगुन तेरे में नाए कोए विंगुन की ते भगत न होए, स्वा सात पनी बरमाओ सात सुवन सदा मन चाओ। कवन सुबे लवत कवन कवन जित कवन अवर, कवन सिरुति माओ कवन जित तो आकर। बिल न पाया पंत जी होवे लेख पुरन, पग न पायो का दिया जन लेखन लेख कुरन। तिते वर न जोगी जाने रूप माओ न कोय, जा करता सिरती को सजे आपे जाने सोए। कीव खरा का कीव सलाई की वरनी कीव जाना, नानका को सा कुआ के एक कलेक सियाना। बद साई बदी नाई की तजा का होवे, नानक जे को आपो जाने आके जिया न सोए। पताला पताला गस गस और कोर के बल तके, एक कहने के बाद सहे सतार कहाँ कते व असुन का एक दात। लेका होए त लेकिए लेके होए विनाश, नानक वादा आकिए आपे जाने आप। सलाई सलाई तिसर न पाया नदरिया वे पावे समल न जानिए। समल सा सुल्तान केरी सती मल दान, किरी तुल न हो वनी जे तिस मनो न विसरे। अंत न सिफती के न अंत, अंत न करने दे न अंत, अंत न वे कैसियो न अंत। अंत न जापे किया मन मंत, अंत न जापे की ताकार, अंत न जापे पारावर। अन करंक ते बलाए ताके अंत न पाए जाए, ए ओ अंत न जाने कोय बहुत कहे बहुता होय। बद साए बुछताओ उचे ऊपर उछना, एवर उचे होवे कोय तिस उचे को जाने सोय। जेवर आप जने आप नानक नदरी करमी दत्त, बहुत करमी क्या न जाए। बाता ताता तिन्न तमाय केते मंगे जो तपार, केते खनन नई विचार, केते कप तुते बेकार, केते ले मुकर पाए, केते मुरे काई काए, केते दू पुख सदमार। ए भी दात्री दातार बन कला सी बाने होए, हो राख न सके कोय जे को कहे अकन पाए। हो जाने जितिया मोकाए आपे जाने आपे दे, आके सेवे के जिसनो बख्शे से फसला। नानक पातशाही पतिशाओ अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी अमूल भंडार। अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल भरे अमूल असमाए। अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवन। अमूल बख्शीश अमूल निशान, अमूल करम।

सत्कृन्न में जुगत्कृन्न में सत्कृन्न में श्री गुरुदेवन में आत्कृन्न में जुगत्कृन्न में सत्कृन्न में श्री गुरुदेवन में आत्कृन्न में जुगत्कृन्न में सत्कृन्न में श्री गुरुदेव एन में इन्हेल Exhale. Let's do a couple of warm-ups. So come, hold on to your knees, begin spinal flex, warming up the spine.

20, 20, 21, and 21. Now lie on your back, stretch.

अरदास एकोंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वर श्री भगवती जी की पाचाई दासवें, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेंती आई, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हो सहाय, अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हराय, श्री हर कृष्ण दयाय जिस दिते सब दुख जाय, तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निद आवे दाय, सब ताय हो सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब ताय हो सहाय। दसां पातशाहां दी जोत धन तान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पातीदार, तद अंदर के खालस जी बोलो जी सतनाम। पंजा प्यारियां चौह सब जादियां, चलिया मुक्तिया हत्तिया जपिया तपिया, जिना नाम जपिया वंद चकिया, देख चलाई तेग वाही देखे आंदित कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई, दादी अंदर के खालस जी बोलो जी सतनाम। जिना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हित से सीस दिते, बंद बंद कताए कोपरिया लुहाइया चरकिया ते चरे, हरिया नाल चराए गए कुर द्वारिया दी से वाले, कुर्बानिया कीतिया धर्म नाही हरिया, सिक्की कैसा स्वासा नाल निभाई, तिना दी कमाई दादी अंदर के कलस जी बोलो जी सतनाम। सारियां तकता सरबत गुरुद्वारिया दादी अंदर के कलस जी बोलो जी सतनाम। प्रथमे सरबत कलस जी की अरदास है जी, सरबत कलसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। नाम चित आवे चित आवन का सदका, सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब, तहां तहां रचिया रेत, देख देख फते बिरद की पेज पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय, खालसा जी बोलो जी सतनाम। सिकानु सिखी दान केस दान, रहतान विवेक दान विसा दान भरोसा दान, दाना सेर दान नाम दान, श्री अमृतसर जी दे स्नान, चुंकिया जुंदे बुंगे जुगो जुग आतल, धर्म का जयकार कलस जी बोलो जी सतनाम। सिका दामा निवा मत ऊंची मत दारक, आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा सहाय, दातर जियो हे न मानिया दे मान, नितानिया दे तान, नियोतिया दियोत सचे पिता वाहे गुरु। गुरु जी, we give our thanks for the blessings of coming together as a sadsangat in such peace and happiness. May all the gifts you give us bring gratitude to our hearts. May we be protected from lust, anger, greed, pride, and attachment. May our only attachment be to thy lotus feet. Please bless all those

राज करेगा कल सा की रहे ना कोई ख्वार होए सब मिलेंगे बच्चा शरण जो हो।

Vahe Guruji Ka Khalsa, Vahe Guruji.

0: pacemaker.
1: Oh, really?
0: Yeah. The electrical

करके कीती रात। खसम सर है ते कम जात, नानक नावे बाज सनाथ। रा गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुरु सतपुरखा। बिनो करो गुरु पास, हम कीर के रम सतगुरु सरनाय कर दयानम परगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाय, हर कीरत मरी रह रास रहा। जनन पिता लोक सदम मेरा प्राण सखाय, हर कीरत मरी रह रास रहा। हर जन केवड़ पाग वडेरे, जन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम लै तृपत समिल संगत गुण परगास। चिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भाग हीन जम पास। जो सतगुरु शरण संग नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिख्या लिखास। धन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। रा गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवह उदम जा। हर हर जियो परिया, सैलप तरमह जंत उपाय। ताकार जक्या गय कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिल सुतरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कष्ट हरिया रहो। जनन पिता लुक सुत बनता, कोय न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे, ठाकुर काहे मन पौ करिया। ऊडे ऊडा वैसे कुसत से पछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावे कवन छुगावे, मन मह सिमरन करिया। सबन धान दस अष्ट सिद्धान, ठाकुर कर तल तरिया। चन नानक बल बल सद बल जाए, तेरा अंतन पारा वरिया। राग समला चोता सो पुरख, एकोंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावे तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा। सब जियत मारे जी तू जिया कांदा तारा। हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज बुडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हो तुद बिन अवर न जाना। तू पर ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सब है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावे तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। समुकत समुकत पय जन हर त्याया जी, तिन तुट्टी जम की फांसी। जन नर पौ जन हर नर पौ, त्याया जी तिन का पौ साब गवासी। जिन से व्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक कर हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर किरे खट करम करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, जिवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे पावे सोए वारते जी, तू आपे करे सोई। तुद आपे सृष्ट सब पाए जी, तुद आपे सिर सब गोई। चन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सच्यार मैडा साई। जो तो पावे सोई थीसी, जो तू नहे सोई हो पाई रहो। सब तेरी तू सब नीत आया, जिसनो कृपा कर है तेन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख कवाए, तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जिए जन सब तेरा खेल, बजोग मुल बिछोड़िया संजोगी मेल। जिसना तू जाना ए सोए जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, समायम। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर विकह जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरण पैलन वासा। पानी पावक तिन है किया,
पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखते टूबियले मन एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनखी सरणा जंतु नाही विसरिया असा महला पंजवा पाई परापत मनुख देहुरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे कित न कामिल साध संगत पज केवल नाम सरंजाम लाग पव जल तरंके जन्म मृत जात रंग माया के रहा जप तप संजम तरम न कमाया सेवा साधन जन हर राया कहो नानक हम नीचे कर्मा शरण परे की रखो शर्मा एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेंती चौपाई हमारी करो हाते रचा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमारे दुष्ट सपै तुम कावो आप हाते मोहे बुछावो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिखे सब करतारा मोर चानज कर दे करिए सब पैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर छाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिखे हमारे तर है छुन छुन सत्र हमारे मर है आप हाते मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए वो जो सदा हमारे पच्छा सिरियस तुझु करिय हो रच्छा राख ले हो मोह राख नहारे साहिब संत साए प्यारे तीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर्ब सन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जूतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जा छन उपजायो आद अंत एके अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सात्रन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत पले पुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचल असतूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान गट कट के पट पट की जान जब उदख रख करा कर तारा प्रजा तरत तब दहे अपारा जब आख रख करत हो कबहूं तुम्हें मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही तरहत निरालम जनत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत पेदा ताको कर पाहन अनुमानत महां मूड़ कछ पेद न जानत महान देव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव आप आपनी बुध है जेती बरनन पिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहि पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहुर रच दीनी काहूं फूल राजा हो बैठा कहूं सिमट पयो शंकर खैठा सिगर सृष्ट दिखाय अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अबर अच्छा मेरी तम करो सिखे उबारे सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण गाता जैसे तुझ सब पाए तमले जय से तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे आप हाते ले हो उबारी सतनाम जय से तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल काव के बार त्या है ताके काल निकट न है रक्षा होए तहे सब काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला
कृपा दृष्ट तन जाहन हरे हो ताके ताप तनक में हरे हो रिद सिद्ध कर मौसब होई दुष्ट छाछ वह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम त्योहारो कहा दर्द दुष्ट दोखते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ लहो बुबारी सर्व ठर मोहो सहाई दुष्ट दोखते लहो बुचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता किलब के सकल दे को हरता दुष्ट दोखन को छ करता शेष दुजय भाय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन बन सत फल पावे सोई दुख नत सब आपत कोई अड़िल सुने गुंग जो यहे सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौन कट

दुख सब विसारना, अंगीकार हो कारे तेरा कारज सब सवरना, सब नागला समरते स्वामी सुख्यो मन हविसारे, कहे नानक सच सच कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है जिस ते सो पावे, सदा

ताल विच तिन वस तू पायो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पायो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को भुंचे तिसका होए उधारो ए है वसत तजी न जाई नित